मत पूछना। दोबारा मत पूछना। लेवो बॉय इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।

असल फरमाइश पे भाई आपके सामने कमर तोड़ मनोरंजन पेश करने आ रही हैं लवली

0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती,
0: और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: Sugama Karma, the perfect gift for your loved ones.
1: Tere liye aas lagaye o zalim aa jaana.
2: Zindagi Suza, हमें एक फोटो मिली है पैराडाइज से, ये आप हैं?